चीन से कम दांत तो मैं गुंच का गुटन हाँ मूल्य आज क्या हुई नस्ता है यह सिद्ध हो गया क्या ये म्यूजिक का है या मुझे बना से जी म्यूजिक का ये कुछ कुछ अगर नहीं दिखता कुछ क्या अमक मार गई सा सही विच सिद्ध हो गया अगर ये दिखता कुछ का दो चिम ही दुगा जो कोई या वे ये बस सही जिस वो इत मात कुछ का जो वो ये दिखता दागना को आया उदय निस्तम है ईस्ट मेन अगर नौ चीज सही है नीशन देश ने वो इस पीछे है अगर नौ जी छे उच छे नौ जी क्या है वाशामागनु दो गया कॉपियो जजी मैंने कोई दो डी के मग इतुगनीज के जजी सही स्नेगी और हागनु दो गया एक है या एक नो वाई उदय देश गया यह एन इतुक सही है व्यास इंत गया यह हाउस में बिठा गनो सही है अब इतनो दे व्यास कुन गनो सही जस्टिस बिल्डिंग है गुदें दे है जज बातुक स्नोज गया अंजी छे उच छे नोच के वी समग्न दो हेगो नो आई है वो गया जी स्पी समय है छे उच छे नोच के जी का अब मगन दो गया मग गया है ननाको गया चको ये तो मगन दो हेगो नो का कुछ के बी समय है के हो गया है ये गया जी है तो को नीच के इस वी छग नो दो हेगो नो वो गया बी समय कुछ गया वो पुकुन बी सम वह मैं नहीं उदय देखते क्या मिस्टर स्नेह से कुनो तो दागनोच क्या ही कम्युनिटी प्राइड है आप मुहतानोच क्या अगर ना निशु चीज़ जिन स्तंभ देनो इस चीज़ को से तो वो बोलने भी सम आई नौ महीना अब तो इस बीच अगर तेज बस भी दागनो गया है कुंडी देखते उस निज जो कुछ अगर तेज कहाँ से तो देख गया वंच अगर ना आई है जब तो दागनोच क्या उदय देखे मिस्टर स्नेह गया उन चीज से जी शिगाच एक कई मिसो एन वी समागन गया जिस बेट तक से क्या आई है एक मुहतानों जग नो आई है कम्युनिटी प्राइड वॉक है एक नोच आई उदय देखे गया मिस्टर स्नेह चे कई क्यों उदय देखे मिस्टर स्नेह चे कोई ताग नोच क्या आई है सबसे आप इस देख जी वावी हाग नो दो एन चीज एवी वी माग नो दन है आई स्कूल कमिश्नर गया